అది ఆరంగేరా చెందిన సినిమా వికెట్ ఉంది రేకి మారాయి కథం అలచెట్టు విధి లాంటాంగ చెందిన జరుగుతూ కాయజన కథ చిన్న మాతృలు తెలిసింది ఆయన కుటుంబంకు బయలు రేకి మరేకు సహా లాంటాంగ చెందిన భారతీయ నాగరిక అని కార్యరత కథం एसएमएस कारोबार दैनिक में संपर्क विहीन कमती में पच्चीस सौ भाग बड़ी शीर्षक में खबर लेखी संपर्क विहीन को अवस्था कहीं पता लगे पीड़ित परिवार ने सरकार को ढोका ढटकाउन ऐसी रहा सामग्री को रूप में पुगे खाद्यान्न त्रिशूली वाली ने रहो भुनासो त्रिशूली पारी का नागरिक भोलिपछि नदीमा गत भरू बसमा आएको विनाशकारी बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा विदेशी नागरिकको उद्धार कार्यलाई पनि तीव्र पारिएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डले जारी गरेको अत्यावधिक तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म विभिन्न देशका 261 जना विदेशी पर्यटकको सुरक्षित उद्धार गरिएको छ। 320 जना अझै सम्पर्कविहीन रहेका छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय नेपाल पर्यटन बोर्ड पर्यटक प्रहरी सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनको संयुक्त टोली रसुवा नागपुर धादिङ र पोखरा जिल्लामा उद्धार तथा राहत कार्य निरन्तर अगाडि बढाइरहेका छन्। यसैबीच रसुवामा बाढी जाँदा नेप्सेमा 160 अङ्क भन्दा बढेको पहिरो गएको छ। यो साता नेप्से परिसूचकमा भारी गिरावट आएको छ। साताको चार दिनको कारोबार विवरण अनुसार नेप्से परिसूचक 160.4 अङ्कले ओह्रालो राखेको हो। यसरी गिरावट आउनुको कारण रसुवाको भोटेको सीमा आएको आकस्मिक बाढी र त्यसले पुर्याएको क्षतिको कारण रहेको छ। साताको पहिलो दिन सोमबार 19.3 अङ्कको गिरावटसँगै बजारमा 2500 बिन्दुमा कायम भएको अवस्था रहेको थियो। त्यो घट्ने क्रम बिस्तारै बाढीपछि बढेको छ र यस साता दुई कम्पनीको कुल 85,500 नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ। यसैबीच कारोबार दैनिकमा निर्यात जन्य मुख्य 20 वस्तुकै निकासी बढेको शीर्षकमा संस्कृति खाता लेख्नुहुन्छ।

समाचार का मुख्य विशेषक भाजगढ़ी में चियावर्गों को उन्नति में 50% अनुदान को आवेदन मत वर्षाया में डेंगू तथा भाइरल जन्य रोग को जोखिम घटाने भाजगढ़ी में सामुदायिक सचेतना बारबदिया में 500 शिक्षक संचालन पेशागत सिंचाई संचालन निर्माण

0: जिल्लाधिकारी साग सब्जी फलफूल सहित पुरस्कार पूरक खानाले बच्चा आमा तन्दुरुस्त गराए। पूरक खाना सँगसँग दुई वर्षसम्म स्तनपान।
1: रेडियो पूर्वाधार एफएम द्वारा चलित मजारी सन्देश।

नायक द्वारा संध्या 5 बजे प्रभावा मौसम बुलेटिन में स्वागत धाम अर्पिन चौधरी स्नातकोटि कृषि राज्य महिला बैहामित प्रत्याय जनता विवरण अभियोग जिला प्रशासन कार्यालय बर्दिया सातवली कलर पात्र विवरण अनुसार 75 जनको खोजी कार्य जारी चलना पछि 151 जन जन सम्पर्क स्थापित दुईजना अस्पतालमा उपचार पालिकाका विवरण अनुसार 12 वर्ग

से निर्मित अपन छोटू कबरू हम देखा अंदर झंडा मारत है किसान भगवान

संध्या सवा छ बजे हमारे संदेश को अपना स्वागत बा मैं कुमार संध्या बिंदु संग मैं कुमार रेडियो प्रभाव एफएम बर्दिया से उत्पादित हमारे संदेश बर्दिया का साथी एफएम राजापुर में सकिले प्रसारण प्रसारण प्रतिभा हमारे संदेश का परिणामी मुख्य मुख्य समाचार का शीर्षक में से 26वां अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस बर्दिया का कुंभ पद्मा एकता युद्ध स्मृति पाठ समारोह में एक कार्यक्रम बैठक मना गए। भारत का आकर्षण बनल थाल परिकार सुरक्षा ग्यारह भीतर सुरक्षित महिला तथा बाल बालिका असुरक्षित महिला तथा बाल बालिका बाकी वहां विपद प्रति कार्यकला की स्थानीय जनशक्ति तैयार ओ उपलब्धि सुनी एक मश्न का फंत आक्रोश की लाश दो की सांस दो पूरा समाचार बिंदु से

तरफ 26वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस में मेरे कार्यक्रम का भी कार्यक्रम का मराठी में

संयोजक अधिवक्ता महेन्द्र प्रसाद खनाल संक्रमणकालीन न्याय समिति व्यवस्था के बारे में जानकारी प्रदान कर रहा।

संदर्भ हमारा संदेश का समय बढ़ाई लागल बा। हमारा संदेश वहीना से पहला मुख्य संदेश फिर पहला भरपूर प्रवक्ता वृद्धक छब्बीस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर्यटन पेपर टाइम फैसिलिटी पार्क सिंहपुर में कार्यक्रम देखा मनाई बा। उन्होंने निर्माणाधीन एक विशेष 16 मेगावाट का माथिलो त्रिशुली एक सौ विद्युत आयोजना में 2005 फसलता खंड का अवस्था 5-3 पीडब्ल्यू थे लेकिन तीन सेकंड पास परिवार आक्रोशित मन अब हमारा संदेश कल बिहार 7 बजे नेपाली भाषा हमारा संदेश लेखाइने बाटी तब समग्र समाचार कक्ष का सकु सक्रिया हुआ प्राप्ति सक्रिया गौरी शंकर कैमरा रमेश संगत सक्रिया बिंदु उमेश कुमार के विधायक रेडियो प्रभाव जुटी।

अवस्था आधारित ताजा खबरों को समय साथियों प्राविधिक साथी राजेंद्र विद्यालय जाने

कृष्ण कहें मैं कन्हे बकेले तो कृष्ण कन्हे नाय बाबा हुए देव के बासुदेव तो बासुदेव के नाव थारू खत्म का गए हैं

उज्यालो कविश्यरोजम रेडियो गुरुबाबा एफएम द्वारा चलचित्र जारी सन्देश।